भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया, जह जह संत आराध तह तह प्रगटाया। प्रभ आप लिए समाए,